हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉली बॉय आज सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर शहीद द्वीप की ओर जाएगा। जलयान आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप की ओर प्रस्थान करेगा और उसकी वापसी आज ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंग लक्ष्मी आज सुबह 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की ओर प्रस्थान करेगा और आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप जाएगा और उसकी वापसी आज 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग आज दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप की ओर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान उसी दिन शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी हडबे आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और जलयान कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम की ओर प्रस्थान करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल 31 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए छूटेगा। रंगत से इस जलयान की वापसी यात्रा कल ही दोपहर 12 बजे इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की ओर रवाना होगा और जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल 31 तारीख को श्री विजयपुरम से छूटकर माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की ओर प्रस्थान करेगा और जलयान की वापसी 1 तारीख को सवेरे 7 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कैमल बे कल 31 तारीख को रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान की ओर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 1 तारीख को लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

दिल से स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कुमारी मीनू और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम इंद्रधनुष। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है दोस्ती। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बल्कि भरोसे और प्यार से बनते हैं। समय के अनुसार वक्त बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती।

दोस्ती ऐसा एक खूबसूरत एहसास है जो अनजान लोगों को भी अपनों की तरह करीब ले आता है। एक सच्ची दोस्ती मुस्कुराहट बांटती है, भरोसा जगाती है।

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है, और दोस्ती में ना कोई शर्त होती है और ना ही कोई हिसाब।

0: दोस्तों कहते हैं दोस्ती ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है जो हमारे जीवन को खुशियों के रंगों से भर देता है और हमें अपने इस अनमोल तोहफे को संभाल कर रखना चाहिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस की 315वीं कड़ी।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाद समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूढ़, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाही, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 315वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देश गान का लुत्फ ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम

वर्षा या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि समुद्र में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से

जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि समुद्र में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर पर्यावरण कार्यक्रम के तहत समुद्री पर्यावरण और कोरल के विषय में डॉक्टर मंजू नायर से ली गई भेंट वार्ता सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम पर कलाकार होंगी भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह और निशिकांत बाली। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह के 9:00। शास्त्र संगीत कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे एम बालासुब्रमण्यम का कर्नाटक शैली में गायन। SMS माई चॉइस फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT आप सुनेंगे आज 11:00। 11:30 पर आप सुन पाएंगे भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 12:00। दोपहर 12:30 पर आप सुन पाएंगे मलयालम कार्यक्रम। 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में फनकार होंगे तहीर सैयद। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर अपनी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी आज शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 22वीं कड़ी। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सुन पाएंगे 4:40 पर। 4:45 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:00। बांग्ला कार्यक्रम समय रहेगा 5:30। किसानवाणी कार्यक्रम के तहत श्री बीरेंद्र से की गई बातचीत का विषय रहेगा पशुपालक से मुलाकात, जो कि आप सुन पाएंगे शाम 6:00। 6:30 पर आप सुनेंगे श्री राधा कृष्ण प्रसाद का लिखा नाटक मन के टांके। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। मौसम की जानकारी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का वक्त रहेगा 7:20। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा युवा संसार। 8:00 संसद समीक्षा आप सुन पाएंगे, जो कि दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 8:15 पर आप आनंद ले पाएंगे चित्रपट संगीत का। वहीं 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव कान। इस कार्यक्रम के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट, 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिनशर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीयदिनाङ्के मादकमुक्त युवविकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारम्भो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादकपदार्थान् विरुध्य शतसप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिकसहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिकसहभागितायाः, सततजनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां सङ्घटनं कृत्वा मादकमुक्तभारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26-2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26-2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिकसुरक्षाप्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। 6:55 पर संस्कृत में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटे के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 93% तथा न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों की अधिकतम तापमान रहा 25.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:06 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45। अब लीजिए सुनिए विमान की उड़ान संबंधी सूचना। दिल्ली से आ रही यात्री विमान संख्या 2937 11:00 श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान संबंधी सूचना। अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजा जा सकता है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अब दूसरी एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों का चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्ररूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoaiarpodbear@prasarbharati.government.in पर भेजा जा सकता है। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharati.government.in/nipp, akashwani.government.in/files/nipp.pdf देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह सुनहरा अवसर ना चुके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तथा पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण की थीम का शुभारंभ किया। द्वीपों के उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिल्म नीति और राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के पुनर्विकास पर समीक्षा बैठक की। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय सोमनाथ संवाद का आयोजन किया गया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 3 स्वर्ण 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुँच गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण की थीम का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच का 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित IMC में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, दूरसंचार ऑपरेटर, नवाचारों, स्टार्टअप, निवेशक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आकार देने के लिए एक साथ काम करेंगे। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिल्म नीति और राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने फिल्म नीति को द्वीप समूह में फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप, साथ ही हितधारकों के योगदान से फिल्म निर्माताओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर द्वीप समूह की उचित ब्रांडिंग सुनिश्चित करने के प्रयास के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर को भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत अभियान के तहत जिले भर में नशा विरोधी जागरूकता गतिविधियां चला रही है। निरंतर जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जिला पुलिस छात्रों, युवाओं, दुकानदारों, पर्यटकों, चालकों, वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता को मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों, NDPS अधिनियम के प्रावधानों और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक कर रही है। इस अभियान के दौरान विभिन्न पुलिस थानों द्वारा द्वीपों के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस मनोरंजन टीम ने शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने में समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बम्बूफ्लाट में कल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अभिभावकों सहित कुल 26 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर समग्र शिक्षा के तहत खंड परियोजना कार्यालय रंगत की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रारंभिक पहचान, व्यापक मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणन तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। ये शिविर कल रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में और 1 अगस्त को सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतल्ला में आयोजित होगा। मूल्यांकन के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और राष्ट्रमंडल खेल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आप

आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय सोमनाथ संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत के ताने बाने को आधुनिक समाज सेवा के मूल्यों पर चर्चा की। कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी ने कहा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि लचीलेपन और आध्यात्मिक रचना का एक जीवंत प्रतीक है, जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सोमनाथ संवाद के दौरान 5 श्रेणियों में अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण पदक, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगा कथ ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंडमान कॉलेज में 8 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीकॉम जनरल, बीकॉम सीएस, बीबीए के लिए 5 अगस्त और बीए अर्थशास्त्र, बीए समाजशास्त्र और बीपीए संगीत के लिए परामर्श 6 अगस्त को रखा गया है। अभ्यर्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह 9:30 बजे से उपस्थित होना होगा। परामर्श के दिन ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा का अंक पत्र के साथ भरे हुए फॉर्म सुबह 10:30 बजे तक जमा करने होंगे। इस बीच जीबी पंत अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परामर्श 4 अगस्त को संस्थान के सभागार में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मथुरा गांव में नए अतिक्रमणों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की। राजस्व अधिकारियों को क्षेत्र में लगभग 40,000 वर्ग मीटर चराई भूमि और खेल के मैदान के लिए चिन्हित 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर नए अतिक्रमण का पता चला था। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राजस्व अधिकारियों ने अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर होम्योपैथी की ओर से अंडमान कॉलेज के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और होम्योपैथी वेलनेस किट वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिसर्च फेरो डॉक्टर तन्मय हल्दर ने शिक्षकों और छात्रों के बीच नींद और तनाव विकारों के साथ शैक्षणिक बर्नआउट के होम्योपैथिक प्रबंधन पर साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर अंडमान कॉलेज के विद्यार्थियों को होम्योपैथी वेलनेस किट भी वितरित की गई। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कार्निकोबार के कई विद्यालयों में कुत्तों के काटने से बचाव और सुरक्षा उपायों पर जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान छात्रों और शिक्षकों को कुत्तों के व्यवहार को समझने, चेतावनी के संकेतों को पहचानने और सुरक्षा उपायों पर जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण की थीम का शुभारंभ किया। द्वीपों के उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिल्म नीति और राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के पुनर्विकास पर समीक्षा बैठक की। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय सोमनाथ संवाद का आयोजन किया गया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे

नमस्कार श्रोताओं, देश प्रेम की भावना के साथ आप सभी को सुप्रभात। देश रागनी के कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रचना। अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। देश के प्रति प्रेम और एकता का संदेश देने वाला यह गीत हर दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये गीत।

सरहद पर डटे हमारे वीर जवान हर पल देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनकी साहस, त्याग और परिवार से दूर रहकर निभाया गया फर्ज हर भारतीय को भावुक कर देता है। आइए उन वीरों को नमन करते हुए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारा सम्मान और हमारी शान है। इसकी मिट्टी की खुशबू, इसकी संस्कृति और इसकी विरासत हर भारतीय के दिल में बसती है। आइए अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए समर्पण और प्रेम का एहसास दिलाने वाला यह खूबसूरत गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम देशरागनी को यहीं विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए पर्यावरण कार्यक्रम।

0: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है समुद्री पर्यावरण और कोरल। इस विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर को। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार।
0: जानना चाहेंगे समुद्री पर्यावरण
1: जी
0: ये है क्या और उसमें कोरल का क्या महत्व है?
1: अब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानें। पृथ्वी जल और थल से बनी है। मुख्यतः थल का भाग है वो करीब 29% है और जो जल का भाग है वो 71%। तो इतने बड़े जलीय भाग पर खूब सारे हमारे संसाधन पाए जाते हैं। उन संसाधनों में मछलियों का जहान है, पादपों का जहान है और साथ ही साथ कोरलों की बड़ी खूबसूरत और रंगीन दुनिया है जिसमें कि कोरल कॉलोनीज में रहती हैं। ये खासकर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो देते हैं। एनोजोआ नाम का एक जंतु है वो एंथोजोआ, ये खासकर कोरलों के लिए जाने जाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट को त्यागते हैं और साथ ही साथ ऐसे जमाव करते हैं कि वहाँ लाइमस्टोन जैसी चट्टानें निर्मित होती हैं। आप ये जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे जो दक्षिणी द्वीप समूह हैं जिसमें कार्निकोबार से लेकर ननकौरी द्वीप तक, इन द्वीपों में बहुत सारे द्वीप जो है कोरलों से ही निर्मित हैं और कोरलों की दुनिया वो करीब 2 मीटर से 20 मीटर की गहराई तक की पाई जाती है और जहाँ पर कि पानी आप पारदर्शी देख सकते हैं, जल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और इनमें जो है करीब ऑरेंज, ब्राउन, पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रे, गोल्डन, इन सभी कलर की कोरल्स होते हैं। बड़े कोमल होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं और ये बड़े फ्रजाइल इकोसिस्टम में भी रहते हैं। लेकिन इनकी दुनिया खूबसूरत होने के साथ ही साथ ये बाकी जो जलीय जंतु है उनके लिए वरदान सिद्ध होते हैं, उनके भोजन के लिए, उनके रहने के लिए और उनको संरक्षित सुरक्षित रहने के लिए ये एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करते हैं। इसलिए जो समुद्री पर्यावरण है उसमें कोरल का बहुत अधिक महत्व है।
0: ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व की जलवायु में परिवर्तन आ गया है, गर्मी बढ़ गई है, तो इस गर्मी का कोरल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
1: जी, एक शब्द जरूर आता है, उसका नाम है कोरल ब्लीचिंग, कोरल का विरंजन हो जाना। वो सफ़ेद पड़ जाते हैं क्योंकि ये मैंने अभी इतने रंग गिनाए आपको कि बहुत ही रंगीन होते हैं और इनका रंग जो है वो बहुत अधिक गर्मी की वजह से जो है वो ख़त्म होने लगता है और जब रंग खत्म हो जाता है सफ़ेद पड़ जाती है, इसीलिए ब्लीचिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब ये रंग खत्म क्यों हो रहा है? हम सभी बहुत गर्मी का मौसम झेल रहे हैं, भले ही हम भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट हैं लेकिन यहाँ पर अगर गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, जैसे मैं कोरलों के बारे में भी कहूँ कि ये विश्व का 1% भारत में है और उसमें से भी अपने द्वीपों में जो है करीब 30% वो कोरल्स पूरे भारतवर्ष में से द्वीपों में हैं। तो इन द्वीपों में जो ये कोरल हैं वो गर्मी के को सह नहीं सकते, उनके लिए तापमान 30 डिग्री या मैक्सिमम 35 डिग्री, उसके ऊपर अगर जल का तापमान बढ़ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, उनमें ब्लीचिंग शुरू हो जाती है, वो अपना रंग, अपनी वास्तविक प्रकृति खोने लगते हैं और उनकी मृत्यु होती है। तो इसीलिए ये बड़े नाजुक, बड़े फ्रजाइल और हमारे वातावरण, मैंने अभी कहा कि इकोसिस्टम को वो संरक्षित रखते हैं समुद्री जल जीवों के लिए, तो इनकी सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक है।
0: आपने ये बात की गर्मी की वजह से कोरल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है
1: जी,
0: और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कोरल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
1: जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर, तो सभी आप समझ सकते ग्लोबल वार्मिंग की बात है, तो हम मनुष्यों पे, बाकी जीव जंतुओं पे, पृथ्वी की सतह पे, हर वस्तु पे असर पड़ रहा है, तो वैसे ही कोरलों पे भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, इसकी इंटेंसिटी जो है उसमें भी कमी आ रही है और उसका प्रभाव ये है कि ये जो तापमान है, जल का तापमान वो बढ़ रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कोरल पे पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त अपने द्वीपों में सुनामी आई थी, सुनामी

0: ने बहुत अधिक जो है कोरलों का विनाश किया। प्रदूषण हर जगह व्याप्त है, जल का प्रदूषण खूब अधिक होता है, मिट्टी का कटाव व जमाव, और साथ ही साथ हम साइक्लोन से भी प्रभावित रहते हैं। और इन सब के अतिरिक्त टूरिज्म का आप महत्व तो समझ सकते हैं द्वीपों में भी, तो वैसे ग्लास बॉटम और ये सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी टूरिज्म एक हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरलों की चकाचौंध से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है, तो उनके बचाव के जो तरीके होने चाहिए वो तो कम होता है, इससे भी जो है इन पे असर पड़ता है। तो ये सारे ऐसे कॉसेस हैं जिसके कारण कि कोरल जो बहुत ही सुंदर दुनिया है जल में जीवों की, वो समाप्त होती जा रही है।
1: आपने जैसे कहा समुद्री पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कोरल, तो और किन किन कारणों से कोरल को बचाने की आवश्यकता है?
0: जी, अब ये समय आ गया है कि हम कोरलों को बचाएं। एक बात ये सामने आई है कि इनको हम दवाओं के रूप में भी उपयोग में ला रहे हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है या खासकर गोलियां जो बनती है उनमें भी इसका इस्तेमाल, और दूसरा हमने इनकम के एक तरीके बताए जिसके कारण विनाश भी हो रहा है लेकिन उससे वृद्धि भी हो रही है। तो आपने जो ये प्रश्न किया कि किस प्रकार जो है जैव विविधता को ये संरक्षित करते हैं, ये जहान है मछलियों का, ये जहान है पादपों का। तो ये जो ब्लीचिंग हो रही है उस ब्लीचिंग की वजह से ये स्टडीज़ भी सामने आई है कि करीब 50 वर्षों में ये कोरल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए अब हमें जो है बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या है कि जो विनाश होता है उस विनाश को रोकने के लिए आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कोरल रहते कहाँ हैं, उनकी प्लाकिंग जो होती है उसमें बहुत अधिक रोक टोक करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ये जीव फ्रेजाइल है तो हमें भी अपनी तरफ से फ्रेजिलिटी का उपयोग करना चाहिए कि हम बहुत सटीक तरीके से बहुत ही संरक्षित और सुरक्षित तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करें, जो कि जल में करीब 20 मीटर पे ही है, और ऐसे जल पे जो दिखाई देते हैं वो बहुत गहरे और जो गंदले हैं वो पानी उसमें नहीं दिखाई देते, और जहाँ पर सांद्रता अधिक है अगर सॉल्ट की मात्रा भी अधिक हो जाए तो वहाँ पे भी कोरल नहीं होते हैं। तो जहाँ पे ये दिखते हैं वहाँ के पूरे वातावरण पर्यावरण में जो जल एकत्रित है उसको प्रदूषित करने से रोकें, ये भी बहुत जरूरी है।
1: मतलब एक विशेष वातावरण में ही वो ये
0: पनपते हैं, रहते हैं, जीवित रहते हैं, अन्यथा वो ब्लीचिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट पूरे विश्व भर में है, उस संकट से अगर हम अपने आप का निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोरलों के लिए भी विशेष सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सुंदर दुनिया हम अपने हाथों से ही खो देंगे।
1: अब चूंकि हमारा अंडमान निकोबार एक पर्यटन स्थल है
0: जी,
1: वर्ष में कई पर्यटक यहाँ आते हैं, तो ऐसे में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए?
0: जी, आपने अभी हॉस्पिटैलिटी की बात की, तो ये पर्यावरण का तो बहुमूल्य अंग है लेकिन साथ ही साथ जो टूरिज्म की प्रैक्टिसेस हम कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल हो, उसके लिए भी हमारे द्वीप समूह में जो है बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो बंडूर जैसा बीच है, जॉली बॉय जैसा बीच है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, और नॉर्थ बे, बर्मा नाला, पोंगी डेरा, रटलैंड, सिंक, ये सब पोर्टबेर के आसपास ऐसे द्वीप समूह या बीचेस हैं जिसमें के पर्यटक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। अब नीतियां लागू की गई हैं कि आप जाते समय अपने बैग में कोरल्स को जमा करके नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, आप मूंगों की बनी हुई सौंदर्य की चीजें या आप कुछ आर्टिफिस चाहते हो तो वो आप खरीद सकते हो, उसकी बिल आपके पास होनी चाहिए। हाँ, आपके पास चश्मा दिया जाता है, आप स्नॉकलिंग कर सकते हो, ग्लास बॉटम से आप देख सकते हो, और वो इतनी अच्छी मतलब रंग बिरंगी मछलियों की दुनिया इतनी सुंदर है, उसको जब आप देखोगे तो कभी आप ऐसा नहीं सोचोगे कि इसको उखाड़ना या बर्बाद करना है, क्योंकि वो समुद्र में है और समुद्री जल जीवों पादपों सबके लिए वो जिंदगी देती है। छोटे से छोटे जीव जैसे कि सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है, या सी फैंस है, या आप देख सकते हैं कि रंगीन छोटी छोटी मछलियां हैं, उन सबके लिए जीवनदायिनी है ये कोरल। तो वो इन सबसे मिलके आपको एक सुंदर सा वर्ल्ड दिखाई देता है जो पानी के अंदर है। वो आपको ये नहीं समझ में आता कि आप कहाँ पे हो, लेकिन आप अनायास ही बिना सोचे समझे इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं ताकि ये बचे रहे, और एक सुंदर इकोसिस्टम जो पल रहा है, बढ़ रहा है, पोषित हो रहा है समुद्र के अंदर, वो बना रहे। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे पर्यावरण हमारा बहुमूल्य अंग है और कोरल भी समुद्री पर्यावरण का एक बहुत ही बहुमूल्य अंग है, तो हमारे जो टूरिज्म प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबिलिटी की ओर अब मुड़ चुका है, तो इस सस्टेनेबिलिटी में

0: कोई भी हार्म ना हो कोरल के लिए, इसका खास ध्यान रखा जाए। तो इसमें जो है नीतियाँ, कानून आ गई हैं, लॉज हैं, जो कि आपके ऊपर भी इम्पोज होती है जो भी वहाँ पहुँचता है। तो इससे हम बहुत हद तक जो है इनको बचा सकते हैं। वैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण तो सभी प्रताड़ित हैं, तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसमें पर्यावरण में बदलाव को रोकने के लिए, पर्यावरण में हो रहे ऐसे बदलाव जो कि मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं, नीतियाँ बन रही है, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, मीथेन एमिशंस वगैरह, क्लोरो फ्लोरो कार्बन एमिशंस वगैरह है, इन सब पे हमने जान लिया है कि ये क्या हैं, इनके बारे में जब जानकारी मिली है तो उसके तौर पे हम अपने व्यवहार को भी बदल रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्रयास मानव के द्वारा होगा, उसका इन छोटे नन्हे सुंदर जीवों पे भी असर पड़ेगा, वो बच जाएंगे अगर हम बहुत ही सुलझे और समझदारी के साथ काम करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसपे प्रयोग हो रहे हैं और आगे भी होंगे, और इससे कोरल शायद बच जाएंगे। दूसरी जगह पे इनको आर्टिफिशियली उगाने की बात होती है, वो भी आजकल सामने आ रही है, तो उनको संरक्षित करने के साथ ही आर्टिफिशियली उगाया भी जाए, जिससे कि ये जो सुंदर प्राकृतिक उपहार हमें मिला हुआ है उसको हम कई जनरेशन्स तक बचा के रख सकें।
1: तो हम समझते हैं डॉक्टर मंजू, आज हमने बात की कोरल के बारे में, तो हमारी बातचीत को जिन लोगों ने सुना है अवश्य उनको जानकारी मिली होगी और इनके संरक्षण में वो अवश्य आगे आएंगे।
0: जी
1: आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर से ली गई भेंटवार्ता। विषय था समुद्री पर्यावरण और कोरल। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का रुख मोड़ते हुए चलिए सुनते हैं फिल्म मैं हूँ ना का गीत। जावेद अख्तर के लिखे बोल इस गीत को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने तथा गायक कलाकार है सोनू निगम व श्रेया घोषाल।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दबंग फिल्म से ये गाना, जिसके संगीतकार है साजिद वाजिद, गीतकार है फैज़ अनवर तथा इस गीत को गाया है राहत फ़तेह अली खान ने।

0: श्रोताओं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम में यूं ही बने रहे, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इसी के साथ गुड मॉर्निंग अंडमान का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें।

0: कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
3: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी

0: कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का योग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जन स्वराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान

0: पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। इस गीत के संगीत निर्देशक हैं रविंद्र जैन और आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर व साथियों ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आइए अब सुनते हैं धर्मवीर फिल्म का गीत, जिसके धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
5: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में दो रास्ते फिल्म का यह गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा स्वर दिए है लता मंगेशकर ने।

अगला गीत सुनिए आंखें फिल्म से साहिर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है रवि ने तथा गायक कलाकार है लता मंगेशकर।

0: कभी कभी।
1: आनंद बख्शी का लिखा तथा लक्ष्मीकांत की धुनों से सजा, सुनते हैं किशोर कुमार व लता मंगेशकर की आवाज़ में ये फिल्म का गीत रोटी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एम बाला सुब्रमण्यम का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर ए रामास्वामी और मृदंगम पर एस वी राजा राव ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए एम बाला सुब्रमण्यम का कर्नाटक शैली में गाया राग कंभोजी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

राग कंबोजी के बाद लीजिए, अब सुनिए। राग हुसैनी, ताल है त्रिपुता।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एसएमएस माय चॉइस।

मौसम की तरह दोस्ती भी रंग बदलती नहीं, सच्ची हो तो कभी साथ छोड़ती नहीं। बारिश में छतरी, धूप में साया बन जाती है, ऐसी दोस्ती हर किसी को मिलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम SMS My Choice में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप अगर हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। श्रोताओं, लेते हैं कार्यक्रम का पहला SMS जो हमें गोलघर से आरव विवान और आर्यन ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कल हो ना हो का ये गाना, जिसे गाया है शान और अलका याग्निक ने। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत शंकर एहसान लौ का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: राजा हिंदुस्तानी। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।
1: पूछो जरा पूछो।

0: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
0: कार्यक्रम SMS My Choice में आपका पुनः स्वागत है। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में फिल्म बॉर्डर का ये गाना। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत अनु मलिक का है। सुनने वाले श्रोता हैं हेडो से कृष्णा और राघव।

लंबा लाइन से अमित, सोनिया और अनीता ने हमें एसएमएस किया है फिल्म बॉबी के इस गीत के लिए। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और सलिंद्र सिंह। विट्ठल भाई पटेल के गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए अब सुनिए उदित नारायण का गाया फिल्म वीर ज़ारा फिल्म का ये गाना। गीत जावेद अख्तर का है तथा संगीत संजीव कोहली का है। एसएमएस भेजने वाले श्रोता है डॉलीगंज से आदित्य और प्रियांश।

टिरलाबाद से युवान, दक्ष और अनिकेत सुनना चाहते हैं शान और सांतनु मोइत्रा का गाया फिल्म 3 इडियट्स का ये गीत। गीत रचना स्वानंद किरकिरे का तथा संगीत सांतनु मोइत्रा का।

बिमलीटन से निखिल और रुद्र सुनना चाहते हैं फिल्म आराधना का ये गाना। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

शैतान खाड़ी से मोनिका और प्रीतम सुनना चाहते हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये गाना। आनंद बख्शी की गीत रचना है, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, संगीत SD बर्मन का है तथा फिल्म का नाम है चुपके चुपके। SMS भेजने वाले श्रोता है तुष्णाबाद से प्रीति, अजय और कृष्णा।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म खानदान का ये गाना। गायिका है लता मंगेशकर, गीत नक्श लयालपुरी का, संगीत रचना खयाम की है तथा फरमाइश करने वाले श्रोता है आटम पहाड़ से विधि सिंह।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1339वीं कड़ी।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोताओं उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित

0: सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।

0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
1: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो
5: अरे
4: भेड़िया,
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर

0: दो साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?

0: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर, सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
4: मेरा
0: अच्छा,
4: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को

0: उनकी पत्नी ने उन्हें यह कहते हुए सुना।
1: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
2: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1339वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म बदतमीज से। गायिका है सुमन कल्याणपुर, गीत रचना हसरत जयपुरी की है तथा संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की गीत रचना। गायिका है लता मंगेशकर तथा फिल्म का नाम है लोफर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में सुनते हैं आनंद बख्शी के गीत रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है तथा फिल्म का नाम है सरगम।

लीजिए अब सुनिए फिल्म वक्त का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर लुधियानवी के बोल को सुरों में पिरोया है रवि ने।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना। संगीत रवि का है तथा फिल्म का नाम है घराना।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म बादल का ये गीत। गायिका है लता मंगेशकर, गीत रचना शैलेंद्र की तथा संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भोले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे है, लीजिए अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 12:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन

इन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत

0: सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आप ताहिरा शहीद की आवाज में गजल सुन रहे हैं। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप ताहिरा सहित की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और लेते हैं पहला गाना जो हमें भेजा है मंगरू टान से श्वेता और सुरेश ने। ये सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और मन्नडे का गाया फिल्म शोले का ये गीत। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

अगली गीत की फरमाइश की है सिप्पी घाट से मनोज और सुनीता ने। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गाना। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत जतिन ललित का है।

स्कूल लाइन से कोमल और प्रीता सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गाना। गीतकार देव कोहली, संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने।

भातुबस्ती से शांति, प्रियंका और अनिल कुमार ने हमें फरमाइश भेजी है फिल्म कुछ कुछ होता है का इस गीत के लिए। गीतकार समीर तथा संगीत जतिन ललित का है, गायक कलाकार है उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति।

नमूना घर से प्रीतम कौर, रमन कौर, परी और किशन सिंह सुनना चाहते हैं फिल्म कबीर सिंह का ये गाना। गीत व संगीत मिथुन का है तथा गायक है अरिजीत सिंह।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें दोपहर के 2 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार।

0: सरकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
3: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
4: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड

0: को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाए। यह था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:32:40 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
4: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
5: 100.9 आपका हमसफर।

0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उसके नाम हैं बाहुबली, जुर्म, हैप्पी न्यू ईयर, इश्क, फिजा, चलते चलते, जीत, मिस्टर इंडिया और किंग अंकल। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

अभी आप कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक सुन रहे थे 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ राजेश्वरी। यादों की बारिश में भीग जाता हूं मैं, तेरी बातों में फिर खो जाता हूं मैं। समय गुजर जाता है चुपचाप, मगर तेरी यादों से कभी दूर न जाता हूं मैं।

जब शाम ढले तेरी याद आ जाती है, दिल की हर धड़कन तुझे बुलाती है, चांद भी छुपे तेरे बारे में अक्सर, क्यों तेरी कमी इतना सताती है।

तेरी यादों का सहारा बहुत है, तेरी यादों का सहारा बहुत है, सुने दिल का किनारा बहुत है। तू मिले या ना मिले जिंदगी में, तेरे एहसास ही प्यारा बहुत है। तू ही हो यादों का सहारा।

तेरी यादों में मुस्कुराना सीख लिया, तेरी यादों में मुस्कुराना सीख लिया, गम के मौसम में जीना सीख लिया। हर पल तुझे महसूस करते हैं हम, हर पल तुझे महसूस करते हैं हम, दूरी में भी रिश्ता निभाना सीख लिया।

तेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखते हैं, तेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखते हैं, तेरे ख्वाबों को आँखों में सजाए रखते हैं। दूर होकर भी तू पास ही लगता है, हम हर धड़कन में तेरा नाम छुपाए रखते हैं।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे सर।
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है भरोदिया बल्लर और जिला लगता सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते हैं?
1: सर खेती अपने हमारी होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं लगी यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, पर दूर पे तलाव थोड़े यहाँ से।
0: हो बाकी का हाल चाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय
0: माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती
1: है? नहीं सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हालचाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
1: हाँ अभी धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी।
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल पहाड़गढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरक से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए, हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज? अब
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं भैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बर से बिजली चमक जिया डरात बादल रे, ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है। वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक

है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. spice.lamhe.vanilla. दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 22वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम शाम 5 बजे, जिसमें किसानों के लिए कार्यक्रम होगा वेलन उल्लगम। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में पशुपालक बीरेंद्र से की गई बातचीत आप सुनेंगे। संध्या 6:30 पर लेखक श्री राधा कृष्ण प्रसाद द्वारा लिखा नाटक सुनिए मन के टाके। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम सुनिए युवा संसार। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8:15 पर। रोजगार समाचार रात 8:30 पर। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम।

हम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट नाइन, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा मिश्रित कृषि प्रणाली। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा किस्मत शीर्षक पर। रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सवेरे 7:30 पर। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और लता मंगेशकर की गाई चंद गजलें आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन सुन पाएंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30, जिसमें आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम, 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में परवीन सबा और साथियों को सुन पाएंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी हमारे लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम आप सुनेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म सलामी से। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के बोल थे, नदिम श्रवण का संगीत था। लीजिए अब सुनिए चमत्कार फिल्म का एक गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाज़ों में। तर्ज बनाई है अनु मलिक ने, आनंद बख्शी की रचना है।

श्रोताओं, चमत्कार फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाना चाहता है उसे प्रेम पूर्वक विदा करो। रिश्ते वही सुंदर और सार्थक होते हैं जो स्वेच्छा से निभाए जाए। किसी को जबरदस्ती या मजबूरी में रोक कर रखना ना तो प्रेम है और ना ही औचित्यपूर्ण। मुक्त मन से निभाया गया हर रिश्ता ही सुखद होता है। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। किसान भाइयों, आज आपको बताना है कि सीमेंट से बने नर्सरी तालाब में मछली बीज छोड़ने से पहले नीचे मिट्टी की परत बिछाई जानी चाहिए या फिर नहीं। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि सीमेंट से बने नर्सरी तालाब में मछली बीज छोड़ने से पहले नीचे मिट्टी की परत बिछाई जानी चाहिए या फिर नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।

0: भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और भाइयों अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं। घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गांव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक पशुपालक श्री वीरेंद्र जी से, जो डॉलीगंज के निवासी हैं और ये काफी समय से पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन करके ये किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी।
1: नमस्कार वीरेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
3: वीरेंद्र जी, आप पशु पालते हैं?
2: हाँ, पशु पालते हैं।
3: मैं आपके पशु पालन के काम और आपके अनुभव के बारे में कुछ बातें जानना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आप कितने सालों से पशुपालन का काम कर रहे हैं?
2: 10 साल से काम कर रहे हैं
3: जी। 10 साल से?
2: हाँ।
3: कैसे पालते हैं पशुओं?
2: घास काट कर जी खड़े खड़े खिलाया जाता है बस, जैसे कि यहाँ पर चारा की व्यवस्था नहीं है, इतनी जैसे सूखे भूसा की व्यवस्था नहीं है।
3: तो आप कैसे इनकी देखभाल करते हैं, कैसे आप खिलाते हैं चारे को?
2: चारे को केवल घास को काट कर उसी प्रकार से दिया जाता है।
3: तो कितने पशु हैं आपके पास?
2: 15
3: के करीब है जी। तो आपने इस काम की शुरुआत कैसे की थी?
2: और इस काम की शुरुआत, जैसे रोजगार मिलने पर आदमी कुछ करता है ना, तो मान लीजिए हम 2 लाख पहले और उसके बाद अपना पशुपालन स्टार्ट किए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 14-15 हो गए
3: जी। बिल्कुल। हाँ। जैसे कि पशुओं को खाने के लिए आप बोल रहे हैं कि हरा चारा, सूखा चारा आप नहीं दे पा रहे हैं, आप हाँ। जो है सिर्फ घास के भरोसे हाँ, ही जो हाँ। है पशुओं को पाल रहे हैं, कि पशुओं को दिन भर में कितने आप दाना या फिर खाने के लिए दे देते हो?
2: केवल घास के अलावा उसके बाद दाना दिया जाता है, उसके अलावा तो सूखा भूसा जैसे देता है, वो तो यहाँ मिल नहीं पाता है।
3: अगर हम बाजार जाते हैं तो पशुओं के लिए अगर हम चारा देखते हैं तो सूखा चारा जो है हमें पर्याप्त मात्रा में बाजार में भी उपलब्ध है?
2: नहीं, अभी तो हम लोग घास ही खिलाते हैं।
3: ये बताइए कि आप क्या क्या पशु पाल रहे हैं?
2: केवल गाय है।
3: सिर्फ गाय पाल रहे हैं जी। हाँ। तो गाय दूध भी देती होगी?
2: हाँ, दूध देती।
3: तो आप गाय के दूध को बढ़ाने के लिए
2: हाँ।
3: गाय को क्या खिलाते हैं?
2: के लिए केवल दाना के अलावा दूसरा और घास के अलावा क्या दूसरी व्यवस्था नहीं?
3: तो इससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है?
2: और दूध की मात्रा जो होती है यहाँ पर, गाय कितना दूध देती है? 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, बस इतना ही दूध देती है?
3: नहीं, दूध देती है। एक टाइम की देती है, दोनों टाइम की?
2: एक टाइम की।
3: सुबह के टाइम की कितनी होती होगी?
2: सुबह के टाइम 4 लीटर और शाम के टाइम 3 लीटर।
3: अच्छा, मिलाकर 7 लीटर के लगभग आपका दूध आ जाता है। वीरेंद्र जी, जैसे कि गर्मियों और सर्दियों के मौसम में, तो बारिश के मौसम में आप पशुओं के जो खाना पीना है उसका रख रखाव कैसे करते हैं?
2: और रख रखाव मान लीजिए कि अंदर से जैसे कि ढाठर के तमाम ऊपर से टीना डालवा दिए हैं
3: जी,
2: और अंदर जैसे कि जाली की मच्छरदानी लगा दिया गया है
3: जी,
2: और उसी में रहती हैं,
3: उसी में गायें रहती। इतने सारे गायों के लिए आपने बहुत बड़ा सा?
2: हाँ, बड़ा है।
3: और इसके अलावा क्या करते हैं आप?
2: और उसी में घास को काट कर लेकर डाल दिया जाता है और दाना अलग से पिला दिया जाता है 2-3 टाइम।
3: ये बताइए कि पशुओं को जो है आप एक कमरे की तरह,
2: कमरे की
3: उसमें आप पशुओं को रखते हैं जो स्थान होता है पशुओं का, तो वो कैसे मतलब गीली रहती है या सूखी रहती है, कैसे रहती है?
2: गंदगी करती है, पक्का स्थान।
3: पक्का स्थान है, तो कैसे वो साफ सुथरा कैसे रहता है?
2: साफ सुथरा, जैसे कि तुरंत प्लेट से गोबर को हमेशा हटा दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उसके बाद जैसे कि पाइप से नीचे साफ कर दिया जाता है, उसके बाद दिन में छूट जाती है।
3: तो वो बीच में जो है जो स्थान जो गीला होता है वो सूख जाता है,
2: सूख जाता
3: है। पशुओं में बीमारियां भी होती है, ये जो बीमारियों से बचने के लिए आप पशुओं को क्या टीका लगवाते हैं, तो कौन कौन से लगाते हैं?
2: थनैला होता है और डेंगू होता है, दो ही बीमारियां अधिक होती हैं।
3: इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए आप टीका लगवाते हैं?
2: हाँ, टीका लगवाते।
3: कितने बार टीके लगवाते हैं?
2: साल में 4 बार लगाया जाता है। 3 माह
3: साल में 4 बार?
2: हाँ।
3: और

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो जब भी बारिश हो वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं।

0: कभी ऐसा होता है कि जब कोई पशु अचानक बीमार पड़ जाए तो आप तुरंत उस समय क्या उपाय करेंगे?
1: अचानक बीमार पड़े तो प्राथमिक उपचार पहले किया जाता है।
0: कोई घरेलू ऐसा उपाय है जो आप तुरंत गाय को दिया जाए उस समय के लिए?
1: और उस समय मान लीजिए कि है जैसे कि ज्वाइन वाइन जो कुछ होता है, जैसे ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिससे मनो जैसे कि पेट उन लोगों का साफ हो जाए, दही कुल दिया जाए।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय है, गाय अचानक से बीमार पड़ गई, आप कहाँ लेकर भागोगे? तो उस समय आप घरेलू इलाज करते हैं,
1: जैसे हींग उंग जैसा है वही सब दिया जाता है
0: उस समय के लिए। जैसे कि आपने बताया कि गाय दूध देने वाली भी आप पालते हो, तो मान लीजिए जैसे दूध का रेट आप तो जानते हैं आज के डेट में दूध का कितना रेट है, दूध के रेट के हिसाब से आपका दूध का उत्पादन अगर ज्यादा है तो आपको रेट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसके लिए आपको सरकार जैसे पशु क्रेडिट कार्ड है या सब्सिडी है, इसका कुछ लाभ मिलता है आपको?
1: नहीं, अभी तो नहीं मिला।
0: अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए, आपके पास बहुत सारे पशु है, इतने सारे पशुओं का आप देखभाल भी करते हैं, खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, तो इस काम में सबसे बड़ी चुनौती या मुश्किल क्या आती है, आप कैसे उससे निपटते हैं?
1: और इससे निपटने के लिए मान लीजिए और या तो आदमी की मान लीजिए व्यवस्था किया जाए अलग से
0: जी,
1: और नहीं तो मान लीजिए घास उतना तैयार करने के लिए एक आदमी कहाँ से तैयार कर पाएगा, और सूखा चारे की व्यवस्था है नहीं, उतना भूसा होता है तो उसको जैसे कि दाना में मिलाकर दे दिया जाता है तो खाती हैं सब। और यहाँ अगर काटने वाला उतना उतना इधर घास भी नहीं होती है, कितना घास काटेगा कोई किसी तरह से मनो जैसे कि चर कर और कुछ हरी घासों के हिसाब से काट कर वो किसी तरह से पूर्ति की जाती है।
0: अभी जैसा आप इतने गाय आपके पास है तो आप घास जो काटते हैं ना गाय के लिए, आप अकेले करते हैं सब काम?
1: नहीं, दो तीन आदमी लोग, दो तीन लोग
0: क्योंकि इतने सारे गाय के लिए
1: कैसे अकेले कैसे कोई काटेगा, अकेले
0: एक से तो होगा नहीं जी,
1: कोई काट नहीं पाएगा,
0: नहीं काट पाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र जी एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, कोई नया व्यक्ति आज के समय में पशुपालन शुरू करना चाहता है तो उसे आप सबसे बड़ी सलाह क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे बड़ी सलाह यह है कि अच्छे नस्ल की गायों को जैसे अच्छे स्थान से जैसे अच्छी नस्ल की प्रजाति, आखिर खिलाना तो सबको पड़ता है, चाहे निम्न कोटि की रहें चाहे उच्च कोटि की रहें, गिनाने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए 10 रख लिया जाए, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो तो उससे फायदा क्या?
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवा को, अगर कोई युवा पशुपालन करना चाहता है तो आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: अपना सुझाव यही देंगे कि अच्छे कोट की रखे और उसकी उचित देखरेख की जाए ताकि उससे अच्छी प्रॉफिट मिले, ताकि आगे की अच्छा प्रोग्रेस हो।
0: और आप कुछ बोलना चाहते हैं पशुपालन को लेकर, जैसे अभी आप पशुपालन कर रहे हैं इसके विषय में आप और कुछ कहना चाहते हैं?
1: और पशुपालन के विषय में यही कहना चाहते हैं कि अच्छे नस्लें रखी जाए, अच्छी प्रजाति की रखी जाए और दूध का विकास किया जाए ताकि आगे बढ़ोतरी हो। मान लीजिए आखिर अगर उन्नत नहीं होगी तो उसको रखने से फायदा क्या?
0: फायदा जी, क्या? बिल्कुल सही वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि बहुत सारी गाय अगर हम रखते हैं और वो दूध ना दे तो हमें कोई फायदा
1: कोई फायदा नहीं हो।
0: वीरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आकर पशुपालन, पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव को लेकर इतनी बेहतरीन जानकारियाँ दी। हमारे जो पशुपालक भाई खुद का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, आज आपके सालों के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने एक पशुपालक श्री वीरेन जी से की गई ये बातचीत सुनी और पशुपालन से संबंधित उनके अनुभव जाने।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: साथियों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब हम कार्यक्रम के माहौल को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और

भाई गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो टमाटर में लगने वाली एक भयंकर बीमारी बैक्टीरियल विल्ट के संदर्भ में है। तो साथियों लीजिए ये जानकारी जिसका विषय है टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट। किसान भाइयों आइए आज हम कुछ बातें करें टमाटर में लगने वाले एक रोग बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु बुरझान के संदर्भ में। जी हाँ ये एक ऐसी बीमारी है जो टमाटर के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करती है। टमाटर की खेती हर एक किसान भाई करते हैं और इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। टमाटर भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि इसमें बहुत से विटामिन भी रहते हैं, जैसे विटामिन बी सी तथा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे किसान भाइयों को टमाटर की अधिक पैदावार लेने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख है कीट एवं बीमारियां। जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि एक रोग जिसे हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं काफी भयंकर रूप से खेतों में लगता है। ये बीमारी हमारे इन द्वीपों के हर भाग में जहां जहां टमाटर की खेती होती है वहां पाई जाती है। इसके कुछ एक लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी है। प्रमुख लक्षण है जब पौधा नर्सरी में हो या जब पौधे खेत में लगते हैं तो पौध लगाने के 10 से 12 दिनों में ही पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है, या कभी कभी जब पौधे फल लगने लायक हो जाते हैं या जब पौधों में फल लगता है उस समय ये बीमारी आती है तो पौधा सूख कर मर जाता है। अगर सुबह सुबह हम इन पौधों को देखें तो ये बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे, परंतु जैसे जैसे ही दिन चढ़ने लगता है या धूप तेज होती है तो ये पौधे मुरझाने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चलती है और अंत में पौधा मर जाता है। ऐसे में अक्सर किसान भाइयों को लगता है कि शायद पौधा बिना पानी के मर गया, यानी पानी की कमी से पौधे की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती क्योंकि ऐसे पौधों को यदि आप पानी दें व सिंचाई करें तब भी ऐसे पौधे ठीक नहीं हो पाते। इस तरह से जो पौधे मर जाते हैं उन पौधों को उखाड़कर इनकी जड़ों को एक गिलास जिसमें साफ पानी है उसमें रख दें तो 4 से 5 मिनट बाद आप पाएंगे कि गिलास में जो पानी है वो बिल्कुल हल्का दूधिया रंग का हो जाता है। इससे पता चल जाएगा कि आपके पौधों में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी थी। क्योंकि ये रोग भूमि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए पूरी तरह से भूमि को उपचारित करना तो संभव नहीं होता है। हाँ नर्सरी के लिए हम भूमि को जरूर उपचारित कर सकते हैं। जीवाणु मुरझान यानी बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी टमाटर, बैंगन, अदरक, मिर्च, मूंगफली, गेंदा, कॉस्मोस आदि बहुत सारे पौधों में लगती है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को इससे काफी सतर्क रहना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। 2-3 साल का फसल चक्र अपनाएं तो इससे कुछ फायदा होगा। अगर आपके खेत में टमाटर में ऐसी बीमारी लग जाती है तो अगली बार उसी खेत में टमाटर को ना लें। पौध लगने से पहले उर्वरकों के साथ

0: ब्लीचिंग पाउडर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। कभी रोगी खेत से निरोगी खेत में सिंचाई का पानी न जाने दें। एक दो पौधों को रोगी देखने पर उन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। गर्मियों में खेत की जुताई भी इस बीमारी से निजात पाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन सबके अलावा सबसे कारगर व सरल तरीका है रोग रोधी किस्मों को अपनाना। अगर आप टमाटर की ऐसी किस्मों की खेती करेंगे जिसमें बैक्टीरियल विल्ट की प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे में आप इस रोग से कुछ हद तक बच सकते हैं और टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं। टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो भाइयों, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था, सीमेंट से बने नर्सरी तालाब में मछली बीज छोड़ने से पहले नीचे मिट्टी की परत बिछाई जानी चाहिए या फिर नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सीमेंट से बने नर्सरी तालाब में मछली बीज छोड़ने से पहले नीचे मिट्टी की परत अवश्य ही बिछाई जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी और सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

और साथियों, इसी के साथ बात और जानकारियों की किसानवाणी की संध्या को आज के लिए अब हम यहीं पर समेट लेते हैं, क्योंकि वक्त अब हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए लेखक श्री राधा कृष्ण प्रसाद द्वारा लिखा नाटक मन के टाके।

0: हेलो हाय क्या हाल है
1: दीप। आज फिर प्रोफेसर वर्मा नहीं आए, शायद बीमार चल रहे हैं, क्लास सस्पेंड है, अब घंटे भर की बोरियत।
0: कमाल है दीपक यार, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट कभी बोर हो सकता है? अरे नजर घुमाने भर की देर है, हर जगह दिलचस्पी का मसाला मिल जाता है। ए, ए, देख, वो देख, वो देख, ब्यूटी क्वीन जा रही है, ब्यूटी क्वीन।
1: भाई गजब की ब्यूटी है, मैं तो सारा पीरियड आंखें चुरा कर उसी को देखता रहता हूँ।
0: हाय क्या बात है। और देखना उसके साथ हमेशा की तरह वही कमबख्त नरोत्तम सिंह चिपका है। यार मुझे तो इस लड़के से बहुत जलन होती है, पता नहीं क्यों।
1: क्यों? ब्यूटी क्वीन कृष्णा तुम्हें लिफ्ट नहीं देती इसलिए? बच्चू ठाकुर की बेटी है, बाप फौज में था समझे।
0: और नरोत्तम सिंह तो यूनिवर्सिटी का टॉपर है मियाँ, कॉलेज क्रिकेट टीम का कप्तान है, और फिर वो हमारी ब्यूटी क्वीन भी तो यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान लेके आई है।
1: कमाल है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है फिर भी दोस्ती है।
0: हाय प्यार के कई ढंग होते हैं प्यारे। अरे तभी तो साइकोलॉजिस्ट, मेरा मतलब वो मनोवैज्ञानिक, कहते हैं ना कि प्यार और घृणा एक ही तत्व के दो रूप हैं। चुप चुप चुप चुप, अच्छा, इधर ही आ रहे हैं। दोनों के हाथों में लाइब्रेरी की मोटी मोटी किताबें हैं। यार अब मुझे तो पता नहीं क्यों मोटी किताब देखते ही पसीना आ जाता है।
1: भाई सब अपनी अपनी किस्मत है, मैं तो ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुआ कि कोई लड़की मेरी ओर आंख उठाकर देखती तक नहीं।
0: और प्यारे अपना तो ये हाल है कि एक बेवकूफ

0: वफा ने फेर ली आंखें तो क्या हुआ। अबे वाहवा तो कर।
1: हाँ, जरूर जरूर।
0: एक बेवफा ने फेर ली आंखें तो क्या हुआ।
1: क्या हुआ?
0: अरे हमने भी दिल लगाया है 2-3-4 से।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: अच्छा अच्छा, अब ये मनुष्य सूरत थोड़ी सी हंसी में बदलो और गम गलत करने के लिए चलो कैंटीन चलते हैं। देखो तुम बहुत उदास हो, दुखी हो, परेशान हो, व्यथित हो, इसलिए कैंटीन का बिल माँ बदल चुकाएंगे। कम ऑन।
1: हाँ, चलते हैं, चलते हैं।

0: बाय द वे, मिठाई कब खिला रही हो कृष्णा?
1: मिठाई किस बात की?
0: क्यों, पिछले सप्ताह कोई कुलीन जमींदार परिवार के लोग तुम्हें देखने आने वाले थे। भाई तुम्ही ने तो बताया था।
1: ओ, वो शादी वाली बात। नरोत्तम, मैंने माँ को कह दिया है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी। एमए का मेरा दूसरा साल है। दरअसल पिताजी पुराने विचारों के हैं। सेना में सूबेदार मेजर थे। कहते हैं बीए कर लिया यही बहुत है।
0: ठीक ही तो कहते हैं।
1: तुम्हें मजाक सूझ रहा है नरोत्तम, मेरी जिंदगी का सवाल है। हम लोग भी कभी बहुत बड़े जमींदार थे। सरकार ने जमींदारी छीन ली तो पिताजी को फौज में नौकरी करनी पड़ी। पिताजी पुराने जमाने के मैट्रिक पास हैं। फौज में रहकर भी वे अपने कुलीनता नहीं भूले हैं। इसीलिए किसी बड़े कुलीन परिवार में ही मेरी शादी की बात चला रहे हैं।
0: तो कर लो ना शादी। अरे उसमें सोचना क्या है?
1: मुझे और मत छिड़ाओ नरोत्तम, तुम तो सब कुछ जानते हो। तुमसे मैंने क्या कुछ छिपाया?
0: अरे अरे, ये कॉमन रूम है, डोंट बी सेंटिमेंटल। चलो बाहर चलते हैं।
2: ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी लड़की ने माँ बाप की इच्छा का निरादर नहीं किया। मैंने अपने कुल की परंपरा तोड़कर लड़की को कॉलेज में पढ़ने दिया, उसका ये नतीजा मिला।
3: कृष्णा ने ऐसा तो कुछ नहीं किया।
2: तुम चुप रहो जी, इससे अधिक मेरा अपमान और क्या हो सकता है। वसंतपुर के कुलीन जमींदार स्वयं लड़की देखने आए थे अपने लड़के के लिए, और ये लड़की मुंह लटकाए बैठी रही, उनकी बातों का ठीक से जवाब तक नहीं दिया। फिर लड़का एक सिनेमा का मालिक है, गांव में 300 बीघे खेत हैं, कार है, बंगला है, ये लड़की आखिर चाहती क्या है?
3: कृष्णा अभी एमए पास करना चाहती है, अभी शादी करना नहीं चाहती।
2: हमारे खानदान में 14-15 साल की उम्र में ही लड़कियों के विवाह हो जाते हैं। तुम्हारा विवाह तो तब हुआ था जब मैं 15 साल का और तुम 11 साल की थी।
3: तो अब क्या जमाना वही है? सुना है सरकार ने तो 18 साल से कम उम्र में लड़की के विवाह की मनाही कर दी है।
2: लेकिन तुम्हारी बेटी तो 21 होने को आई।
3: सुनिए, हमें आपने बतलाया था कि लड़का मेरी कृष्णा से कम पढ़ा लिखा है।
2: इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है, और फिर आजकल डिग्री को कौन पूछता है? मेरे मातहत कितने बीए पास थे। लड़का सिनेमा का मालिक है, अपनी कार है, और फिर बहुत ही कुलीन वंश का है।
3: मगर लड़की की राय तो ले लेनी चाहिए।
2: लड़की की राय? मेरी राय ही उसकी राय है, समझी? ये संबंध हो जाने पर हमारा रुतबा और बड़ा हो जाएगा। कान खोल कर सुन लो कृष्णा की माँ, ये शादी वही होगी, समझी? कृष्णा को वे लोग पसंद कर गए हैं, कोई मजाक हंसी ठट्टा नहीं।

0: नरोत्तम की माँ, आज थाली में एक ही सब्जी क्यों है?
1: आजकल सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। पालक का साग 5 रुपए, टमाटर 8 रुपए।
0: बस बस, तुमसे बाजार भाव कौन पूछ

0: है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आज थाली में एक ही सब्जी क्यों है।
1: आज 26 तारीख है। आपके पेंशन के रुपए तो 20 तक मुश्किल से चलते हैं। आपके 400 रुपए के पेंशन से क्या गृहस्थी चल सकती है? वो तो कहिए, खेतों से अब भी थोड़ा बहुत अनाज आ जाता है, नहीं तो भगवान जाने क्या होता।
0: नरोत्तम की माँ 32 साल तक पुलिस की नौकरी की, पुलिस में रहकर भी अपना दामन साफ रखा। एक जमाना था कि हमारा खानदान जिले भर में मशहूर था। हमारे दादा लाखों के आदमी थे, बीसों तो उनके नौकर चाकर और कारिंदे थे। अपने गुस्से के चलते उन्होंने सब कुछ गंवा दिया।
1: आपने तो बताया था कि कत्ल के जुर्म में उन्हें काला पानी की सजा हो गई थी। उन्होंने जमीन के झगड़े में एक दूसरे जमींदार को गोली मार दी थी। हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल में वर्षों तक मुकदमा चला, सारी जमींदारी और संपत्ति समाप्त हो गई।
0: हाँ नरोत्तम की माँ, उसी का नतीजा है कि जिस खानदान में रोज 200 आदमियों को राजसी भोजन मिलता था, आज उसी के वंशज की थाली में सिर्फ आलू की भाजी है।
1: समय बहुत बलवान होता है जी। यह कहो कि ससुर जी पुलिस में सिपाही लग गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दादाजी की मृत्यु तो काले पानी में ही 3रे साल हो गई थी।
0: अब शायद भगवान अच्छे दिन दिखाएंगे। तुम्हारा बेटा आईएएस की परीक्षा पास कर गया है, इंटरव्यू बाकी है। उसके पास करने पर वो बड़ा अफसर बन जाएगा।
1: भगवान करे वो बड़ा अफसर बने, एक ही तो हमारा लाल है। अरे ये रोटी क्यों छोड़ दी? आज तुम्हारे मन लायक खाना नहीं बना ना?
0: नहीं, खूब बढ़िया खाना बनाया है। एक ही सब्जी अगर ढंग से बने तो काफी है। लो, अब तुम भी खा लो।

0: नरोत्तम की माँ, नरोत्तम की माँ, अरे जरा सुनना।
1: क्या है जी? जब से तुम्हारा बेटा अफसर बना है तुम चहकते ही रहते हो। अभी तो वह ट्रेनिंग पर गया है, क्या उसकी चिट्ठी आई?
2: अरे नहीं भगवान, बाहर डीआईजी साहब की गाड़ी खड़ी है, वे नरोत्तम से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। एक समय जब ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, मैं इनके मातहत एएसआई था। कितने गौरव की बात है नरोत्तम की माँ कि डीआईजी साहब स्वयं मेरे घर आए हैं। उनके लिए झटपट तुम चाय तो बना दो। मैंने पड़ोस के लड़के को मिठाई और नमकीन लाने के लिए भेज दिया है, वो आता ही होगा।
1: तुमने हाँ तो नहीं कह दिया?
2: क्यों हाँ नहीं कहूँ?
1: अभी कुछ मत कहो, जवाब दो कि लड़के की राय लेकर ही कुछ कहना ठीक होगा।
2: उनकी लड़की बीए में पढ़ रही है, सुंदर भी है, फोटो लाए हैं। दामाद को एक गाड़ी देंगे, शादी ब्याह का खर्च और 50,000 अलग से।
1: सुनिए, उसने एक लड़की पसंद कर ली है, बहुत सुंदर है, अपनी जात की भी है। एक दिन वो उसे लेकर घर पर भी आया था मुझसे मिलाने। उस समय आप पेंशन लेने बाहर गए हुए थे, लड़की यहीं किसी कॉलेज में पढ़ाने लगी है।
2: तो मैं डीआईजी साहब को क्या जवाब दूं?
1: लो ये लड़का मिठाई खरीद कर ले आया, चाय बन गई है, ले जाओ। और सुनो, उन्हें अभी यह कह दो कि बेटे की राय के बाद ही कुछ कह सकते हैं।

0: बेटा नरोत्तम, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। डीआईजी साहब खुद ही ये प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे।
1: पिताजी, मैंने माँ को अपनी बात बता दी थी।
0: मैंने सोचा था कि तुम मेरी बात मान लोगे। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। इस संबंध से हमारी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी तुम सोच सकते हो बेटा। और फिर इतना अच्छा दहेज, अपनी बेटी को देने के लिए उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है।
1: पिताजी, आप तो जानते हैं मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता।

0: डीआईजी साहब का आदमी आज भी सवेरे मेरे पास आया था। उन्हें तुम्हारे आने की सूचना मिल गई है। वे कह रहे हैं कि यदि आपका बेटा लड़की देखना चाहता है तो उसका प्रबंध भी हो जाएगा।
1: नहीं पिताजी, मैंने अपनी पसंद माँ को बता दी।
0: पसंद पसंद पसंद, किसकी लड़की है आखिर वो?
1: वो सेना के किसी सूबेदार मेजर की बेटी है। उनका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, मैं तो कभी उनके घर भी नहीं गया।
0: सुना है लड़की तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में थी और अब वो किसी कॉलेज में पढ़ाती है।
1: जी, माँ ने आपको ठीक ही बताया है।
0: मुझे तो तुम्हारी बात पर हैरानी हो रही है नरोत्तम। तुम इतने बुद्धिमान होकर भी सीधी सी बात नहीं समझते। तो मैं डीआईजी साहब को सूचना भेज दूं कि लड़का विवाह करना नहीं चाहता?
1: यही अच्छा होगा पिताजी, व्यर्थ में उन्हें असमंजस में रखना ठीक नहीं।
0: जाओ, जो अच्छा बुरा चाहो करो, एक बाप तो बेटे की भलाई ही सोचता है।

0: मुझे तो इस लड़की के दिमाग का पता ही नहीं चलता। अब तो 23 भी पार कर चुकी, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। कितना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। तुम उसे समझाती क्यों नहीं कृष्णा की माँ?
1: मैंने क्या उसे ऊंच नीच नहीं समझाया? मेरी तो आंखों की नींद हराम है। ठीक है, गोविंदपुर के जमींदार का लड़का उससे कम पढ़ा लिखा था, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसने तो वकील साहब के यहाँ भी शादी करने से इनकार कर दिया। लड़का हाई कोर्ट में वकील है, उससे कम पढ़ा लिखा नहीं है। बाप के पास गाड़ी बंगला सब है, इकलौता लड़का है, फिर भी ना के सिवा हाँ कहती नहीं। कहती है विवाह अगर करेगी तो नरोत्तम नाम के लड़के से, और सुना है वो भी कोई अफसर हो गया है।
0: किसका लड़का है?
1: मैंने उसके बाप का पता नोट कर लिया है, कोई पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, अपनी ही जाति का लगता है।
0: लाओ उसका पता दो। लड़की का बाप हूँ, पहल तो मुझे ही करनी होगी। सारी बिरादरी में चर्चा हो रही है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई और सूबेदार मेजर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुझे तो लड़की का नौकरी करना भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, इकलौती संतान है, उसका जी भी दुखाना नहीं चाहता।
1: पता पता ये लो।
0: रिपु दमन सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, राजा बाजार, शेखपुरा। ठीक है।

0: कौन है भाई, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटा नरोत्तम, जाकर देखो तो कौन है।
1: जी पिताजी, आपको किनसे मिलना है?
2: रिपुदमन सिंह का यही मकान है
1: जी, भीतर आइए।
0: कौन है आप?
2: मेरा नाम ठाकुर विजय सिंह है।
0: ठाकुर विजय सिंह, कनौली के ठाकुर?
2: आप मुझे जानते हैं?
0: जानूंगा नहीं, आप फौज में थे ना? अपने दुश्मन के खानदान को मैं क्या कभी भूल सकता हूँ ठाकुर?
2: दुश्मन का खानदान?
0: नाटक मत करो ठाकुर, तुम्हारे ही खानदान के चलते ही तो आज हमारी ये हालत हुई है। तुम्हारे खानदान के साथ मुकदमा लड़ने में ही हम लोगों की सारी जमींदारी खत्म हो गई। मेरे दादा को काले पानी की सजा।
2: ओह, तो आप उसी खानदान के वारिस हैं जिन्होंने मेरे दादा का कत्ल किया था। उफ, मैं दुश्मन के खानदान के पास रिश्ता लेकर आया। हे भगवान,
0: रिश्ता लेकर? पहेलियां न बुझाओ ठाकुर, मैं भी ठाकुर वंश का हूं। घर पर आए हुए दुश्मन को

0: हम मेहमान सा सलूक देते हैं। कहो कैसे आना हुआ, भीतर आओ।
1: भूल से आ गया। दरवाजा बंद कर लो रिपुदमन, अपने पितामह के हत्यारे के खानदान से बात करना भी पाप समझता हूँ। दरवाजा बंद करो।
2: पिताजी, ठाकुर साहब कृष्णा के पिता हैं।
3: अरे उन्हें आपने जाने क्यों दिया, वे तो नरोत्तम से अपनी बेटी का रिश्ता करने आए थे।
0: नरोत्तम की माँ, मैं भी आवेश में आ गया था, फिर भी मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा था।
3: भौजी आदमी ठहरे, जल्दी गुस्से में आ गए, उन्हें अपने दादा के कत्ल की याद आ गई।
0: अरे मैं भी तो पुलिस का आदमी हूँ, मुझमें भी तो ठाकुर का खून है।
3: गुस्से में वे लड़खड़ाते हुए गए हैं, बूढ़े आदमी कहीं बेहोश होकर गिर न पड़े।
2: 3 पुश्त पहले गुस्से में किया गया अपराध, आप दोनों उसे आज भी ढो रहे हैं।
0: मैं कैसे भूल सकता हूँ कनौली के ठाकुर परिवार को, उन्हीं के कारण तो हम बर्बाद हो गए।
3: भूल जाइए अब उन पुरानी बातों को, आप ही तो कहते थे कि पहले दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों साथ ही शिकार करने जाया करते थे।
2: बुरा हुआ माँ, बहुत बुरा। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ अगले हफ्ते के रिजर्वेशन के लिए, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है।

0: ये विवाह दुश्मन हत्यारे के परिवार से रिश्ता कहाँ हो कृष्णा की माँ?
1: माँ माँ पिताजी बुला रहे हैं।
0: कहाँ हो कृष्णा की माँ?
2: आई बेटी।
3: दो दिनों के बाद तो उनकी आज बेहोशी टूटी है। सिर फट गया था ना, तुम्हारे रिश्ते के लिए ही तो वे नरोत्तम के पिता के पास गए थे। रास्ते में एक मोटर से धक्का लग गया और भाग देखो, नरोत्तम पीछे से स्कूटर में जा रहा था। उसने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और हम लोगों को सूचना दी। बहुत खून निकल गया था।
1: वे ना होते तो?
3: नरोत्तम ने तो तुम्हारे बाबूजी को नया जीवन दिया बेटी। हम लोगों का खून कहाँ काम आया। लो अब वे पूरे होश में आ गए। फल का जूस लेकर आ रही हूँ बेटी।
0: कृष्णा की माँ?
3: हाँ कहिए कहिए, मैं यहाँ हूँ।
0: मेरी बाह में दर्द हो रहा है कृष्णा की माँ।
3: थोड़ा दर्द तो होगा ही जी, बहुत खून चढ़ाया गया है आपको। नरोत्तम ने अपना खून देकर आपको बचाया है, अस्पताल पहुंचाया, रात रात भर जाकर हम लोगों की मदद की, और ठाकुर रिपुदमन सिंह भी आपको देखने आए थे।
0: रिपुदमन सिंह मुझे देखने आया था? वो दुश्मन?
3: नरोत्तम तो उन्हीं का बेटा है जी, और तुम्हारी बेटी उसी से तो ब्याह करने की जिद कर रही है।
0: रिपुदमन सिंह मुझे देखने आया था? उसके बेटे ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई?
1: माँ माँ वे फिर आए हैं।
0: कौन आया है बेटी?
4: मैं आया हूँ ठाकुर, तुम्हारा होने वाला समधी, और आज मैं तुमसे रिश्ता मांगने आया हूँ।
0: मुझे माफ कर दो रिपुदमन, मैं तीन पुश्त पहले घटी एक घटना को लेकर पागल हो गया था। मेरे शरीर में तो तुम्हारे बेटे का खून है भाई।
4: आप जल्दी से अच्छे हो जाओ ठाकुर, मैं बारात लेकर तुम्हारे घर पहुंचने की तैयारी कर रहा हूँ। यही खबर देने आया था, क्या करूं? अरे भाई, तुम्हारी लड़की की तरह मेरा लड़का भी बड़ा जिद्दी है।
0: कृष्णा की माँ सुन रही हो ना, सुन रही हो ना इन

0: की बातें। अरे अरे अपने होने वाले संधि का मुंह तो मीठा करवाओ।
1: रहने दो ठाकुर, आवेश में मत आओ। अभी तुम्हारे टांके खोले नहीं गए हैं, आराम से लेटे रहो।
0: आज मेरे मन के टांके खुल गए हैं रिपु दमन, मन के टांके। कितनी शांति मिल रही है मुझे।

अभी आप लेखक श्री राधा कृष्ण प्रसाद द्वारा लिखा नाटक सुन रहे थे, मन के टाके। कलाकार थे सतीश माथुर, इस्माइल खान, राजेश कुमार निराश, श्रीमती एम पूर्णिमा, सरजूलाल, श्रीमती डी एम सावित्री, एन चंदा नवीन और श्रीमती ललिता नायर निर्दोष। और प्रस्तुतकर्ता थे श्री सतीश माधुर। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर तथा FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम सुनिए युवा संसार। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत, रात 8:15 पर। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। एग्री टिप्स कार्यक्रम में कल प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा मिश्रित कृषि प्रणाली। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम, जो केंद्रित होगा किस्मत शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन सुन पाएंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30, जिसमें आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम, 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम, दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप एक ही श्रोता के पसंद के गाने सुन पाएंगे। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में श्री कलई येनम से की गई बातचीत का विषय रहेगा गोबर गैस प्लांट। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा समाचार तरंगणी संध्या 6:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:55 पर। 7:00

0: 15 मिनट पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक किया पारित। मेक इन इंडिया पहल के तहत एनसीसी कैडेटों को आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों से कराया गया परिचित। और ऐतिहासिक स्थलों से लोगों को जोड़ने और विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। राज्यसभा में आज कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। इस समय वे विधेयक पर सदन को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया था। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा लोगों का विश्वास सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से अधिक सशक्त बनाना है। विधेयक में नकल और परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी आध्यात्मिक संगठन, कॉलेज, विश्वविद्यालय और मेरा भारत के युवा एक मंच पर आ रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से 1 अगस्त को श्री विजयपुरम स्थित जिला न्यायालय परिसर में

विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी और आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया जाएगा। जिन नागरिकों के मामले लंबित हैं, वे अपने विवादों से संबंधित आवेदन कल तक लिखित रूप में जिला विधि सेवा प्राधिकरण श्री विजयपुरम के सचिव के पास जमा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान पूरा करने वाली महिला टीम से मुलाकात की और उनकी उपलब्धि तथा साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस टीम का सफल अभियान पूरे देश के लिए गर्व की बात है। श्री सिंह ने कहा कि महिला टीम ने न केवल समुद्री अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि इस उपलब्धि ने महिलाओं की क्षमता से जुड़ी रूढ़ियों को भी चुनौती दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मेक इन इंडिया पहल और हेरिटेज वॉक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी FM रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में NCC कैडेटों के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के ANO लेफ्टिनेंट डॉक्टर विवेक कुमार साहू ने किया। श्री साहू ने ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में हो रही प्रगति का उल्लेख किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और कॉलेज के कर्मचारियों ने सहभागिता की। कला एवं संस्कृति विभाग ने पर्यटन विभाग के सहयोग से आज कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराना तथा विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना था। हेरिटेज वॉक की शुरुआत मजार पहाड़ से हुई। इसके बाद प्रतिभागी गवर्नमेंट प्रेस और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय से होते हुए बैटल ऑफ एबरडीन मेमोरियल पहुंचे, जहां इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में पर्यटकों, छात्रों, टूरिस्ट गाइड और आम लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दूसरे चरण की प्रवेश परामर्श प्रक्रिया 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अंतिम मेरिट सूची के आधार पर इस परामर्श में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 5 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक मूल प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय के सभागार में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अंडमान विधि महाविद्यालय में LLB पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग सुबह 10 बजे कॉलेज के सभागार में शुरू होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र उम्मीदवारों के अंतिम मेरिट सूची कॉमन ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। महाविद्यालय ने पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित तिथि और समय पर सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आज महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की कुंजी विषय पर युवा व्यावसायिक गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 150 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन भागियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित विकसित भारत युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम और राष्ट्रीय युवा संसद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व किया था। चेन्नई से रवाना हुआ जहाज MV स्वराजदीप के कल दोपहर करीब 2 बजे तक राजधानी श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। इस जहाज पर लगभग 600 यात्री सवार हैं। जहाज हेड़ू जेट्टी पर पहुंचेगा। वापसी

यात्रा में यह जहाज 3 अगस्त को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए जहाज पर अतिरिक्त सामान चढ़ाने का कार्य 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक किया पारित। मेक इन इंडिया पहल के तहत एनसीसी कैडेटों को आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों से कराया गया परिचित। और ऐतिहासिक स्थलों से लोगों को जोड़ने और विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से ही बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट तथा समुद्री क्षेत्रों में अगले 6 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ खराब मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः सभी मछुआरों को अगले 6 घंटों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शुक्रवार 31 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जलयान की अगली यात्रा कल 31 जुलाई को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप के लिए होगी। इस जलयान की वापसी अगले दिन 1 अगस्त को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा तथा 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी हडवे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और 3:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान अगले दिन 1 अगस्त को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर हैं 112-0319-2232100, 0319-2333077 और 0319-2332400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म निर्भय से। आवाजें थी विनोद राठौर और साधना सरगम की, देव कोहली के शब्द थे, संगीत राम लक्ष्मण का था। अब सुनते हैं साधना सरगम और अमित कुमार को फिल्म पांडव में। धुन बनाई है जतिन ललित ने और इस गीत को लिखा है वेणु महेंद्र ने।

साधना सरगम और अमित कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से सावन के महीने का पावन पर्व शुरू हो रहा है और दोस्तों यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस पूरे महीने शिव जी की विशेष उपासना की जाती है और उनसे लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने हेतु प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सावन केवल आस्था और भक्ति का महीना ही नहीं बल्कि प्रकृति के सौंदर्य और हरियाली का भी पर्व है। बारिश की रिमझिम फुहारों के साथ चारों ओर हरियाली छा जाती है और वातावरण भक्तिमय हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उनका स्वागत कर रही हो। तो आइए दोस्तों, इस बारे में और भी बातें जानते हैं इस रूपक सावन का महीना एक पावन पर्व के माध्यम से।

भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का परिवर्तन केवल प्रकृति का नहीं बल्कि भावनाओं, आस्था और जीवन दर्शन का भी है। वर्षा ऋतु के साथ आने वाला सावन महीना ऐसा ही एक पवित्र काल है जो प्रकृति की हरियाली, शिव भक्ति, लोक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द का अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। संस्कृत में इसे श्रावण मास कहा जाता है, जिसका नाम श्रवण नक्षत्र के आधार पर पड़ा है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और भारतीय पंचांग में सबसे अधिक धार्मिक महत्व रखने वाले

महीनों में गिना जाता है। सावन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध, संयम, सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का भी संदेश देता है।

पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में जलाभिषेक, गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। यह कथा त्याग, करुणा और लोक कल्याण की सर्वोच्च भावना का प्रतीक है।

सावन वर्षा ऋतु का वह समय है जब धरती नई हरियाली से ढक जाती है, खेतों में फसलें लहलहाने लगती है, नदियां और तालाब भर जाते हैं, पर्वत बादलों की चादर ओढ़ लेता है और वातावरण शीतल हो उठता है। कोयल की मधुर धुन तान, मोर का नृत्य, वर्षा की रिमझिम और मिट्टी की सोंधी सुगंध मन को अनायास ही आनंद से भर देती है। भारतीय साहित्य में सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना कहा जाता है। लोकगीतों, कजरी, झूला गीतों और मल्हार रागों में सावन की सुंदरता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। यह महीना हमें प्रकृति के संरक्षण और उसके प्रति कृतज्ञता का भी संदेश देता है।

सावन का प्रत्येक सोमवार श्रावण सोमवारी के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। बेलपत्र, धतुरा, आक के पुष्प और फल अर्पित करते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। अनेक श्रद्धालु दिन भर उपवास रखकर शिव पार्वती की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और संयम के साथ की गई उपासना मन को शांति, आत्मबल और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करती है। सावन के सोमवार आत्मसंयम, भक्ति और सदाचार का अभ्यास करने का अवसर भी है।

सावन का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा है। देश के विभिन्न भागों से लाखों शिव भक्त गंगोत्री, हरिद्वार, गौमुख, सुल्तानगंज तथा अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लाकर अपने निकट के शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कांवड़िए कठिन यात्रा पैदल तय करते हैं।

और हर हर महादेव और भोले बम के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। मार्ग में अनेक सामाजिक संस्थाएं निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, जल और विश्राम की व्यवस्था करती है। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन, सामूहिक सहयोग और आस्था की अद्भुत मिसाल भी है।

सावन में व्रत रखने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मसंयम और अनुशासन का अभ्यास भी है। अनेक लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करते हैं तथा दान पुण्य करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में व्रत का उद्देश्य शरीर और मन दोनों की शुद्धि बताया गया है। संयमित जीवन, नियमित प्रार्थना, ध्यान और सेवा की भावना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। सावन हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि श्रेष्ठ आचरण और सद्भावपूर्ण व्यवहार में निहित है।

भारतीय समाज में सावन का विशेष संबंध महिलाओं की लोक परंपराओं से भी है। नवविवाहित महिलाएं मायके जाती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती है, हरी चूड़ियां धारण करती है और झूलों का आनंद लेती है। कई क्षेत्रों में हरियाली तीज, मंगला गौरी व्रत तथा अन्य पर्व अत्यंत उत्साह से मनाए जाते हैं। महिलाएं माता पार्वती की पूजा कर सुखी दाम्पत्य और परिवार की मंगल कामना करती हैं। लोकगीतों में ससुराल और मायके के भावनात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। इस प्रकार सावन परिवारों में प्रेम, अपनापन और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का माध्यम बनता है।

सावन मास अनेक महत्वपूर्ण पर्वों से भी समृद्ध होता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या प्रकृति और वृक्षारोपण का संदेश देती है। अनेक वर्षों में रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा भी इसी मास में आती है, जो भाई बहन के प्रेम तथा सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करती है। इस प्रकार सावन केवल शिव भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के विविध आयामों का उत्सव भी है।

भारत के विभिन्न राज्यों में सावन का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है, किंतु उसकी आत्मा एक ही रहती है। उत्तर भारत में शिवालयों में विशेष भीड़ रहती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, देवघर के बैद्यनाथ धाम, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ तथा देश के अनेक शिव धामों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिरों में रुद्राभिषेक, भजन, कीर्तन और सामूहिक पूजा का आयोजन वातावरण

भारतीय साहित्य में सावन का विशेष स्थान है। कालिदास के मेघदूत से लेकर आधुनिक हिंदी कविता तक वर्षा और सावन की भावनाएं बार बार अभिव्यक्त हुई हैं। लोक भाषाओं में कजरी, झूला और मल्हार गीत आज भी ग्रामीण जीवन की पहचान है। हिंदी सिनेमा ने भी सावन का महीना, रिमझिम गिरे सावन और अनेक गीतों के माध्यम से इस ऋतु की सुंदरता को अमर बना दिया है। सावन की फुहारें केवल खेतों को ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन को भी नई उमंग और आशा से भर देती है।

सावन हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। वर्षा का जल संरक्षण, वृक्षारोपण, नदियों की स्वच्छता और जैव विविधता की रक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक परंपराओं के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाया। सावन का हरियाली से जुड़ाव हमें याद दिलाता है कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। इसीलिए यह महीना पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।

आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में सावन हमें कुछ पल ठहर कर आत्मचिंतन करने की प्रेरणा देता है। उपवास हमें संयम सिखाता है। पूजा मन को शांति देती है। परिवार के साथ त्योहार मनाना संबंधों को मजबूत बनाता है और प्रकृति के बीच समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सावन का वास्तविक संदेश बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता, सेवा, करुणा और संतुलित जीवन है। यही कारण है कि आधुनिक युग में भी इसकी लोकप्रियता और महत्ता निरंतर बनी हुई है।

सावन का महीना वास्तव में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। यह महीना भगवान शिव की असीम करुणा, प्रकृति की अनुपम छटा, परिवार की मधुरता, लोक परंपराओं की जीवंतता और मानव जीवन में संयम एवं सेवा के महत्व को एक साथ समेटे हुए है। वर्षा की हर बूंद मानो शिव के आशीर्वाद का संदेश लेकर आती है और हरियाली यह स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रेम, आस्था, प्रकृति और सद्भाव में निहित है। यदि हम सावन के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संदेश को अपने जीवन में उतार सकें तो यह पावन मास केवल कैलेंडर का एक अध्याय नहीं रहेगा, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और समाज को भी नई दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। हर हर महादेव।

सावन का महीना एक पावन पर्व। दोस्तों, अभी आप यह रूपक सुन रहे थे। वाचक स्वर थे दीपक कुमार सिंह तथा लता राज नंदिनी के और लेखक थे दीपक कुमार सिंह। तो इस श्रावण मास के बारे में रूपक सुनने के बाद हम आपको सुनवाते हैं शिव जी को समर्पित यह प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनने पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच, कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
4: तो दोस्तों, इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज

कर दिया और डीएम के समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृहमंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के

जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग, लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने

प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालत राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए, बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा के

इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जेन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म पेन गेस्ट से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, धुन बनाई हैं SD बर्मन ने, मजरो सुल्तानपुरी के शब्द हैं।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का एक गीत। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार नीरज का लिखा एक गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमा तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमा का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE, BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA एवं MCA ऐसे क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees

0: 4.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: श्रोताओं, अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप समवेत स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान हम आकाशवाणी के श्रेक विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की

0: पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूंगा।
1: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए।

0: छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू LPG उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती

कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। आईएन स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
2: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चलें तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है
1: जी,
2: कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
1: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं हम, फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
2: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं।
1: जी,
2: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे।
1: जी, एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है। तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है, तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
2: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत हो

0: वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इकोसिस्टम भी वहां पे लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे, और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो
1: जी
0: ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो हैं ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं, और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं, अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में एक अलग है, और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे? क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSL MTL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है।
1: जी
0: मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब ये 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है। मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
1: जरूर
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप के और की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, ₹10,000 आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर,
1: जी
0: तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
1: जी
0: तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है,
1: जी
0: तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इंडिया में इस तरह की करने की बहुत क्षमताएं हैं, और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपेरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं, और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है।
1: जी
0: UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है, और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था।

0: लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है
1: जी
0: तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है।
1: जी
0: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती हैं। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है।
1: जी
0: अभी गाँव में तालाब है तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए तो वो भी, आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए वो ठीक है या कम है, वो आपको पता लग जाएगा।
1: जी
0: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं।
1: जी
0: हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं, तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे,
1: जी
0: और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी, और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
1: जी
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गाँवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गाँव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3,580 के लिए प्रयास कर रही है, और इसी साल में 75 इसी तरह के गाँव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने सतनावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था। 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
1: जी
0: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी होगा कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफटॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं
1: जी
0: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारे एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही विल बी रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
1: जी
0: ये इंडिया में होने जा रहा है।
1: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, OpenRAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं, और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा, और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है,
1: जी
0: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे, और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया, और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या

0: डाटा सेंटर्स हैं,
1: जी
0: हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the coming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport gram sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes.
1: Also. Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारे विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक

0: Now, question number 122, Sriman A.A. Raghim Ji.
1: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं। ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी है। ग क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और घ क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
0: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वाज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
0: Honorable Minister.
1: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉयज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को, देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
0: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, with reference to the impact on employment security, will the honorable minister state if any assessment has been made on how the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
0: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को

0: सोशल सिक्योरिटी देने वाला है देश भर, सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो। और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट एसईएसआईसी के लाभार्थी नहीं थे, ईपीएफओ में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ईएसआईसी के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिलाकर हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसे पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
0: ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जो स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया

0: मशीन आए तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट ने हमें सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशन दी है, ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज

0: देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था। स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और एक फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: हेड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस every financial year without fail. Sir, the minimum wage is not announced yearly by the ministry. The ministry has any proposal to announce minimum wages every financial year that will help the laborers across the country. Thank you, sir.
1: Honorable Minister.
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDR के द्वारा, VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास से बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है। वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटैक्ट जेल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने

0: मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए, तभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आनंद मिश्रा
3: रक्षा निखिल खड़ से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है, और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
6: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें, हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे, आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहब

0: से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही हैं, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है। और हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है। और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मान्य सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
3: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
4: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं 38 डिसिप्लिन में। आज ये लीग हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है।

0: और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा दशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहिए?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है। उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है। कई कारण है। आज

0: करने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है। ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष।
1: हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए।
2: और के चार कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये चार कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया आप हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसके पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्रेस जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए कुछ होता है 40% इसी में महिला है। अभी 80% ज्यादा हो रहा है, महिला का ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही स्टार्टअप्स

0: पहले हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान यानी युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी तो योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रेंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए यानी सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स में सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार मेला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में से प्रवृत्त किया गया है इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरा निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस से ना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ाया है सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन।

0: इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पाटीदार जी।
2: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है। पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रावधान है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
4: प्रश्न संख्या 126। क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
5: चेयरमैन सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर वाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड इंक्लूडिंग सक्सेस रेट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं दूर स्थानों पे रहते हैं वकील कर नहीं सकते उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिश कुंडिया जी।
6: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम

0: से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बताएंगे। धन्यवाद।
1: दी हाउस स्टैंड्स अडजॉर्न्ड टू मीट एट 2 PM।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार तट तथा समुद्री क्षेत्रों में अगले 6 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ खराब मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः सभी मछुआरों को अगले 6 घंटों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की नवी तिथि तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। सुबह के समय 5:28.35 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।